सुनो शारदा 90.8 FM। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें, बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा, 120 नंबर हो जाता है 4060205, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं, और मुलाकात का जो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है, कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
6: तेरी

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं कराता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच। आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहां से कंप्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहां की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर, मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में, और हम जब बाहर में रहती है, जब माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी, हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जाकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है, हाँ बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा, बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके।
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगे। तो इसने बहुत इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ। इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिविजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था। वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ आपके साथ।
1: इंसिडेंट हुआ और उतने माधुरी मैम में बहुत अच्छी है एक्चुअली, के लगता है मेरा खुद का बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: शहजादी बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही है कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया।
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है उसमें अगर बहुत बड़ा हेल्प योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं सब सेम होती है, इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है उधर में भी सेम है, कोई फर्क इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है। ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में मेरी ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है पोस्ट बीएससी नर्सिंग की, आप स्टूडेंट रह चुकी है, आप एलुमनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कार्यक्रम।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्शन मार नहीं रहे थे, और जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना हम।
2: हाँ, मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर सिविल इंजीनियर।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात पर आओ।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लू।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: हाँ इसमें उस टाइम में मेरे जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है। तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी, तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में बांग्लादेश का था, हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था, तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है डॉक्टर का, अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में तो नर्स क्यों नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं चलो मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इस तीनों को बताया, उसको बोला कि हम लोग ये करना चाहते हैं।
0: उसने बोला दोस्तों ने मिलकर ही
2: कंपनी बनाई। उसको उसने बोला तुमको पागल हो गए, तुम ऐसे के ऐसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम इतना उतना प्लेस नहीं दिया। उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज। तो उसने मैंने क्या किया, मैं मेरा जो 5% 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया। फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया। तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल।
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है
0: तो nice.
2: इसको दिखानी है तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया उसको सिखाया फ्री में. हमारा जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेती है, सिर्फ दुआई लेती है.
0: बहुत खूबसूरत.
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं. तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम. अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है. तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया. नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं. जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी. मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे. तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है, तो उसने बोला 1,000 लगती है. तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में. तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा. उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है.
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई.
2: तो उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया. उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला. फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया. एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया. हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है. हाँ, एक अच्छा सोसाइटी है.
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए. आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें. आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा.
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे. लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ.
0: हाँ.
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं. पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना.
0: बादो तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो. खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी. कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपको अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी, जो कि यहाँ के पास आउट हैं. खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं. खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती. खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं. तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसी कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई, क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा। शहजादी, अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: हाँ, कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वॉल के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उससे काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड था, हार्ट अटैक था, तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए
0: हाँ
1: जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेव करनी है। तो मैंने बोला वो सब डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोती है ना, वो मेरा दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: उसमें तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ, वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारा, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा, उसने मेरे को एक ही चीज था, जो वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है, हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया। उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रहा। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसके उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी में कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी। रियली रियली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखिएगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
1: मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत जो बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है, तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर, हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ, उसको सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपनी सिटी में करा,
1: हमारे देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और किसी कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, when I die, people should have a smile on their face that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे, शाबाश शाबाश मेरे लाल लगे रहो।
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
0: ये बहादुर है, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ।
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा तुम,
1: प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
1: रहे। एक मैं बात बताओ, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है, तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: वाह, मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
1: ठीक है,
0: बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा, आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी तो निकल पड़ी, मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो गगन, बांग्लादेश जाऊंगा मैं, नीदरलैंड जाऊंगा मैडम, जहां जहां जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहां एक बहादुर है, मेरे को आई लव लव यू बोला था उसने।
0: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सब ने पसंद किया। दिल से एक बार फिर शहजादे आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
1: हाँ, तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था वो तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में, इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी। तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसको से मेडिटेशन सीखा है। देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव अ डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन। I feel like oh, there was a lion to come and save me. So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
0: Thank you so much, Shahzadi. और शुक्रिया आपके लिए माधवी, बहुत अच्छी बात आपके फेवर में सुनने को, समझने को मिल रही है। बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रही हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुछ और कहना चाहती हैं माधवी, आप कह सकते हैं?
3: हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारे जो मेन, जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता धरता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी, मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस ऑल आर वर्किंग एज अ टीम। तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम, सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई, दे आर डूइंग, आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे। दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं, वी वांट टू सर्व दिस कंट्री, बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे, और अब इस कंट्री को जरूरत है, वहां के इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग्स जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है।
0: क्या बात है माधवी, वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते। सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया, और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है। शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें, कि दुआएं हर किसी को चाहिए, और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं। किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
3: सर हमें भी बहुत धन्यवाद।
1: We also become happy to talk to you.
0: Thank you, Shahzadi. So, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, न टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Ole ole ole. Oh, Sholat. हेलो कौन
2: नमस्कार हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं
2: जल्द मिलते हैं
1: हेलो हेलो हेलो
4: आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ORS और जिंक है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर RK शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले तो ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय, यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें, उसमें
0: आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है, तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए। जो भी अच्छे आपको जो है कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो वो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं। घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर सनी 2। आइए सुनते हैं छाप तिलक ऑन सुरोशादा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार करते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं आपके जाने पहचाने सिहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से।
1: भाई शशि कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, बिकॉज क्योंकि जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूं, या यूं कहेंगे गार्डन गार्डन हो जाता हूं, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूं समझ लीजिए कि स्वागत कम ही मिलता है।
0: तो स्वागत आपका हो चुका है और अब चलते हैं सवालों की ओर।
1: जी
0: तो सिहतिया जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, क्या एक बार फिर सरल भाषा में समझाएंगे इन सबको?
1: जरूर। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है, और 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है, और 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनीमिया माना जाता है। दोस्तों,
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता।
1: हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं। समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आगे भी बातें होती रहेंगी सिहतिया सिंह जी से और टीकन देवी से, बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी सुना रही हैं आपकी अपनी टीकन भाभी, आइए सुनते हैं।
2: ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में ऐसा तो होता है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई, रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: तो भाभी, फिर आगे क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है, यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: अच्छा सिहतिया जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: भाई, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन गोली से कम असर या जल्दी सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IV यानी कि 4th FCM जैसे नस के रास्ते दिए जाने वाले आयरन उपचार पर विचार कर सकते हैं।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल नहीं। IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अच्छा सिहतिया भैया, अब जरा जो IVFCM की आप बात कर रहे हैं तो इसको जरा आसान भाषा में समझाइए, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए।
1: भाई देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को

0: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि पहले जांच, फिर सलाह और फिर उपचार।
1: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
0: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
1: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
0: जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख है।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ट्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
1: टीकन देवी जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने। अब सियतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
0: क्योंकि मध्यम या गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वे IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें, स्वास्थ्य कर्मी की बात समझें।
1: सियतिया भैया, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है?
0: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना है। जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
1: यानी फायदा केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल टीकन देवी से जानना चाहूंगा, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को ले जाएं, उसमें देरी ना होने दें। तीसरा, जांच में साथ जाएं। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करें। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवां, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
0: हाँ, इलाज के बाद भी फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि डॉक्टर से मुलाकात, महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी?
0: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगने का मतलब ये नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
1: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
1: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
0: गलत। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है।

0: AVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
1: गलत, ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर ट्रेंड हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
2: गलत, हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
1: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत कीजिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
2: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव है दोस्तों।
0: बिल्कुल, तो सेहतिया भैया और टीकन देवी जी कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। और अब दीजिए अनुमति, लेकिन सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बात होगी नवजात शिशुओं की सुरक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं, कुछ देरी कर देते हैं और कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से भाभी।
1: अरे धन्यवाद भाई, और धन्यवाद रेडियो के उन सभी श्रोताओं को जो बहुत ही जरूरी विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका ये भी शुक्रिया करूंगी कि आपने बहुत जरूरी विषय उठाया है। आज नवजात बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ के इलाज की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल टीकन देवी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे SNCU की। पर ये SNCU है क्या और क्यों जरूरी है भाभी?
1: हाँ, मैं ये आपको बताऊंगी और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगी जो कि समुदाय से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा और स्मार्ट मिलकर इस श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर विषय पर जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है आप लोगों को पूरी जानकारी हो। तो आज बाबू मैं आपको बताऊंगी कि ये SNCU क्या होता है। सबसे पहले SNCU का मतलब है स्पेशल न्यू वॉर्न केयर यूनिट, यानी खास तरह का यूनिट है जो जिला अस्पताल या मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्सें, खास मशीनें बच्चे की निगरानी करती हैं। यह यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हो जाएं, कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों या सांस लेने में दिक्कत हो, पीलिया, संक्रमण या तेज बुखार से ग्रसित हों, जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म हों, उनके लिए भी यह यूनिट है। SNCU को ऐसे समझो, नवजात बच्चों की ICU, समझ रहे हैं ना भैया?
0: जी जी,
1: जहाँ हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
0: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
1: हाँ, गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं उसे SNCU में जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यही है।
0: टीकन देवी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
1: हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ आज भैया, नवजात में नीचे दिए गए किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे तुरंत SNCU यूनिट में भेज देना चाहिए। पहला लक्षण, दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त लगे या उसके हाथ पैर ढीले लगे, तेज सांस यानी 60 से ज्यादा प्रति मिनट सांस लेने में मुश्किल होना, धीरे धीरे सांस आना या छाती धसना, लगातार रोना या उल्टा हो जाना या बहुत ज्यादा सोना, जरा जरा सी देर में दौरे पड़ना या फिट्स, शरीर का बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाना, नाभि में पस पड़ जाना, लालिमा आ जाना या उससे बदबू आना, गंभीर पीलिया खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी आना और दूध पी के वापस निकालना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। अगर किसी नवजात में दिखाई दें तो बिल्कुल हल्के में ना लें, उसे तुरंत SNCU यानी बच्चों की जो ICU है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की
0: थी,
1: स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ले जाना चाहिए। वहाँ बच्चा डॉक्टर, नर्स और खास मशीनों की निगरानी में रहता है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं तो डर ही गया था कि जिस तरीके से आप लक्षण बता रहे हैं तो गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक बात याद ये रखना कि नवजात में देरी का मतलब खतरा है, तो इसलिए एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओं, इसे दिल में बांध लीजिए या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए। खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। टीकन देवी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
1: हाँ, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो ये पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक एक सेवा के बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहली जो सेवा है जो कि SNCU में दी जाती है, वार्मर, यानी नवजात बच्चा जब अपना तापमान नहीं संभाल पाता तो उसे वार्मर में रखा जाता है, जिससे उसका तापमान संतुलित किया जा सके। ऑक्सीजन और CPAP, अगर बच्चे को तुरंत सांस लेने में मुश्किल है तो CPAP से फेफड़ों को मदद मिलती है, यानी बच्चा सांस धीरे धीरे ले पाता है और सही कंडीशन में पहुंच पाता है डॉक्टर्स की निगरानी में। तीसरा, दवाइयां और एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसके लिए बच्चे को तुरंत दवा दी जाती है। फोटोथेरेपी, यानी पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी जो बच्चे के पीलिया को दूर करने में मदद करती है। शुगर और फ्लूड मैनेजमेंट, लो शुगर अगर नवजात में हो जाती है तो ये बेहद खतरनाक संकेत होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है, डॉक्टर्स और नर्स के ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखा जाता है। फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद से दूध नहीं पी पा रहा या दूध पीने में दिक्कत कर रहा है या दूध को उल्टा निकाल रहा है तो NG ट्यूब से माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, जो कि उसके लिए बेहद कामगार साबित होता है। KMC, यानी कंगारू मदर केयर, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे माँ उसके बेहद करीब है और बच्चा जल्दी ठीक होने लगता है। निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर घंटे में जांच, ये सब होता है इस केंद्र में। परिवार को सलाह दी जाती है कि कैसे दूध पिलाया जाए, कैसे बच्चे की साफ सफाई रखी जाए, कब बच्चे के पास वापस आना है और कब बच्चे के पास समय बिताना है। फॉलो अप डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है ये भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं। वहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, इतना भी लोगों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, जिसका हमारे समुदाय के लोगों को जरूर लाभ उठाना चाहिए।
0: जी वाह, इतना सब कुछ एक ही जगह है, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, है ना?
1: हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ भैया?
0: जी।
1: सबसे खास बात तो ये है कि सारी दवाएं, सारी सुविधाएं, डॉक्टर और नर्स की सारी निगरानी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त मतलब आपको बस जानकारी होनी चाहिए और आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: मुफ्त, सच में मुफ्त? तो लोग समझते हैं कि अस्पताल में बहुत खर्चा होगा।
1: नहीं जी, ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। सरकार ने नवजात के इलाज को मुफ्त रखा है और सरकार इस कैंपेन को सामुदायिक रेडियो और स्मार्ट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। पहला, भर्ती। भर्ती होने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस। गरीबी या पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके, यही सरकार का साफ और सीधा संकेत है।
0: सीधा संकेत है, सीधा संदेश है। तो टीकन देवी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन परिवार क्या करे?
1: देखो, परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परिवार को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से नवजात के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे तो अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर की दवा बीच में ना रोकें, KMC जरूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोकर ही बच्चे को छुएं, 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, फॉलो अप की तारीख को कभी ना छोड़ें, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें।
0: सही बात है। घर की जिम्मेदारी घर वालों की?
1: जी, घर वालों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। आज भाई पैटर्न और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चे ठंड बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बार बार दूध चाहिए और वजन धीरे धीरे बढ़ता है। KMC तो ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
0: टीकन देवी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं थी?
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बताती हूँ।
0: जी।
1: 4ANC चेकअप, IFA की गोलियाँ, TT TD वैक्सीनेशन, रक्तचाप या शुगर की जांच, संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU में जाने से बच सकता है, यानी बच्चा ICU में, जो कि बच्चों की यूनिट होती है, उसमें जाने से बच सकता है।
0: जी, अगर बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो क्या करें टीकन देवी?
1: देखो, बच्चा अगर अचानक से बीमार पड़ जाए तो उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों को सीधे 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सभी सामान उसके अंदर रहते हैं। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बेहद जरूरी है। स्तनपान, दवा समय पर, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और सफाई का ध्यान रखना, और कोई भी खतरा दिखे या कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे बच्चे को परेशानी हो रही है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना।
0: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही?
1: बच्चा परिवार की जिम्मेदारी पहले है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की और फिर समाज की। परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से बच्चे के लालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं जो कि नवजात के लिए जरूरी हैं, उनकी भी जानकारी परिवार को होनी चाहिए। अब जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार और समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसे परिवार, समुदाय और सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित जागरूकता कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थागत प्रसव बढ़ाएं, इस बारे में भी बात की जा सकती है। नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं और बताएं कि अगर नवजात में लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट करें। नाभि पर तेल और घी लगाने की कभी सलाह न दें। स्वच्छता बढ़ाएं। मैं तो यही कहूंगी, जब सोच बदलती है तो पूरा गांव स्वस्थ होता है, और गांव स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, और जब समाज स्वस्थ होता है तो पूरा देश स्वस्थ होता है। तभी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मोटिव पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन को बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम एक बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
0: धन्यवाद टीकन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद साथ साथ श्रोताओं का भी। आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
4: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
5: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
4: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
3: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: In 2018 में यहाँ पे JEE-AS के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
4: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
3: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
5: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
6: पानी उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
3: बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEIS रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाईकर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
4: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEIS केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
3: एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
5: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी

कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीवी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।
3: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

से निकल रहे थे। मेहरबानों, कालिया ने कह दिया, हरिया तेने बहुत बड़ा अपराध किया, तेने अपनी ब्याही से और अपने मरे पुत्र पर कर ले लिया, इससे बड़ा अन्याय और अधर्म भला इस दुनिया में कौन सा होगा।

मठ में पड़ी हुई थी। वो छलिया विश्वामित्र जिसने राज को लिया था और जिसने हरिश्चंद्र को भंग के घर बिकवाया था और तारा रोहतास को रामलाल पंडित के यहाँ केवल 60 भार सोने के बदले दोस्तों उसी ने रोहित को शराब बन के डस लिया और उसी ने आज तारा के मुंह पर खून लगा दिया और उसके आगे सेठ कलर का आधा शरीर कच्चा होया और आधे से रक्त बह रहा था। आज तारा को डायन बना दिया और उधर काले को आदेश दे दिया वहां के राजा ने काशी काले इस डायन को मरवा दो, ये मानस खानी मेहरबानो। आज हरिश्चंद्र के हाथ में खूनी तलवार और अपनी ब्याही पर तलवार उठाने के लिए

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
2: माहवारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की माहवारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
1: माहवारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी माहवारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
2: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही माहवारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। माहवारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
9: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

बैरमपुर बस्ती में धर्म सिंह के यहाँ पहुंच गए, जिनके लड़के का नाम नीरज था। और किस तरह से कहने लगे, हम लड़के की तलाश में आए हैं।

बेटी वाले को बहका दिया कि अच्छी दावत करनी चाहिए शादी में। तो दोस्तों शादी में जो दावत हुई उसमें खूब जोर लगा दिया बेटी वाले ने मेहरबानों, और बारात विदा होने वाली थी, दुल्हन को सजाया गया। आज उर्मिला सखी सहेलियों के बीच में किस तरह से बैठी हुई है, सुनिए यहाँ के बोल क्या।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: भाई दहेज की आग सुनो, भाई दहेज

0: क्यों, कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो, दो महीने के इलाज में इतना सुधार है, तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: मैंने

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन

0: दवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सुविचार से, जो हमें भेजा है संजय साहू जी ने पोटिया कला दुर्ग भिलाई से। लिखते हैं,
2: हर आने वाला दिन एक बेहतर दिन होता है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस दिन को कैसे जीते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच तो ये है श्रोताओं कि दिन अच्छा या बुरा नहीं होता
2: जी,
3: सब कुछ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। तो आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है
2: पुणे से सुयोग वटवे का, जो कक्षा 7 के छात्र हैं। लिखते हैं,
4: नमस्ते अजीत जी और विमलेश जी, मैं सुयोग वटवे पुणे से हूँ। मुझे आपके शैक्षणिक प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं 12 साल का हूँ, मेरे पापा इंडियन आर्मी में हैं, अभी वे सिक्किम में पोस्टेड हैं। आगे लिखते हैं,
2: वे सिक्किम से आपका प्रोग्राम सुनते हैं, मेरी माँ और मैं भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए।
3: तो सुयोग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अपने सभी परिजनों को हमारा नमस्कार कहिएगा।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
3: और ठियोग, शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज।
2: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया जी। लिखते हैं,
3: आज कार्यक्रम उमंग में नदियों के बहने का कारण जाना, हमारे ज्ञान कोष में बहुत इजाफा हुआ। ये इजाफा मैंने अपने परिवार के साथ भी साझा किया, सबको बहुत अच्छा लगा। आदरणीय विमलेश जी और आदरणीय अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, आपको भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो श्रोताओं, हमारा सबसे पहला प्रश्न था, दुनिया के सबसे नए या युवा पर्वत का नाम बताइए।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। सबसे युवा पर्वत है हमारा अपना हिमालय पर्वत। दुनिया की अन्य सभी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत प्राचीन और पुरानी हैं। हिमालय की आयु दूसरी सभी पर्वत श्रृंखलाओं से कम है।
3: तो आइए सुनिए अब हमारा अगला प्रश्न, जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है।
2: श्रोताओं, पिघली हुई चट्टानें जब पृथ्वी के गर्भ में या भूमिगत होती हैं तो उसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वे फूटकर ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकलती हैं तो उसे लावा कहते हैं।
3: जी, और हमारा तीसरा प्रश्न सुन लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न था, भूस्खलन के मानव जनित कारण बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, भूस्खलन के मुख्य मानव जनित कारणों में से एक है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और उसकी तुलना में कम वृक्षारोपण का होना। पेड़ों के नहीं होने से धरती का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण ग्लेशियर अधिक पिघलते हैं और बाढ़ आती है।
3: तो आइए अब सुनते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, बाढ़ आने के कोई दो मुख्य कारण बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, पेड़ों का कटना और नदियों में कचरा डालकर उसे प्रदूषित करना और उसे छिछला बनाना। छिछली हो जाने से नदियां अपना तटबंध तोड़कर बाहर की ओर बहने लगती हैं और अधिक वर्षा होने पर वे अपनी सीमाएं तोड़कर बाढ़ ले आती हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, ये स्थानीय नहीं है। पृथ्वी के तापमान और वर्षा के पैटर्न में यदि दीर्घकालिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं तो इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी नदी का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया की सबसे गहरी नदी का नाम बताइए।
3: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपना उत्तर या संदेश भेज सकते हैं।
2: और हाँ, आप CIET NCERT को फेसबुक, एक्स, इंस्टा और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है
3: अपना अपना काम।
2: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है, जिसमें विशेष रूप से बताया गया है कि हम सबका अपना अपना काम है, जिसे हमें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हरपल चलती जाती चीटी, शमका राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
0: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
0: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
0: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
1: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ माता पिता की जहाँ तक हो सके मदद करना, है ना ये हमारा अपना काम। तो आइए जब सब करते हैं अपना अपना काम तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम। अपना अपना काम, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल, बाल कलाकार वान्या, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना अपना काम।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: आइए अब चलते हैं दूसरे कार्यक्रम की ओर। हमारा आज का दूसरा कार्यक्रम है लौट आई खुशी की खुशी।
2: इस कार्यक्रम में खुशी नाम की एक बच्ची की रोचक नाट्य कथा है, जो ये संदेश देती है कि पर्यावरण की रक्षा करना और पेड़ पौधों का संरक्षण करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन तभी खुशहाल हो सकता है जब हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। कार्यक्रम बच्चों को पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित करता है।
3: खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटी जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा
2: ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
3: नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम
1: अरे
6: वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर है।
1: अरे सुन तो,
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर हे भगवान तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहां चली गई थी। जहां वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी। प्रकृति की खूबसूरती जाने कहां चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
7: लौट आई खुशी की खुशी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, नीतू शर्मा, ताशु और श्रेया। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और अमिता भट्टी। विशेष परामर्श अजीत होरो। आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी।
9: ओहो शालिनी, तुम अपना पासवर्ड बार बार भूल जाती हो।
1: क्या करूं, याद ही नहीं रहते इतने सारे पासवर्ड जो हैं।
9: तुम अलग अलग पासवर्ड रखती ही क्यों हो। मुझे देखो, मैं तो अपना पासवर्ड एक ही रखता हूं, चाहे वो बैंक का हो या ईमेल का।
1: अरे नहीं दर्श, हमें अपना पासवर्ड हमेशा अलग अलग रखना चाहिए।
9: ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि किसी को अगर गलती से एक पासवर्ड पता चल गया तो बाकी अकाउंट्स तो हमारे सुरक्षित रहेंगे ना।
10: अपना पासवर्ड कभी भी एक न रखें। अलग अकाउंट मतलब अलग पासवर्ड, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
11: और अब सुनते हैं एक मजेदार शिशु गीत।

0: श्रोताओ, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए, कल फिर से मिलते हैं।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान
यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित
4: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
3: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
2: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
5: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी, फुटबॉल और जीवन।

0: मानव मानव, अरे ये यूनिफॉर्म नहीं उतारा अभी तक, क्या बात है आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है। स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या?
1: नहीं नहीं मम्मी, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। असल में अगले शनिवार मानव की टीम का दूसरे स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल मैच है, बस इसी को लेकर परेशान है।
2: अरे मानव, खेलने में परेशानी की क्या बात है?
1: असल में विवेक भैया, मानव की टीम हर बार हार जाती है, पर पता नहीं क्यों मानव ने इस बार दूसरी टीम के कप्तान पिंटू से ये कह दिया कि इस बार मानव की टीम ही जीतेगी और अगर नहीं जीतेगी तो मानव कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा।
3: मानव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ है? ये तो बड़ी गलत बात है। पहली बात तो बेटा, खेल में शर्त नहीं लगाते, और दूसरी बात, अगर शर्त लगा ही ली तो फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और जीतो।
0: हाँ, ऐसे मुंह लटकाने से जीत थोड़े ना मिल जाती है मानव।
2: अब जल्दी कर, कपड़े बदल और मैदान जाकर प्रैक्टिस कर, चलो खड़ा हो।
4: पर भैया, पिंटू की टीम बहुत तगड़ी है, हम उसे नहीं हरा सकते।
2: मानव, ये तो तुझे उसे चुनौती देते वक्त सोचना चाहिए था, और वैसे भी फुटबॉल एक टीम का खेल है। अगर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सही तालमेल से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
1: और अब जा, तैयार होकर अपनी टीम इकट्ठी कर और प्रैक्टिस शुरू कर, अब जाना।
2: जा, चल चल।
4: नहीं दीदी, पिंटू की टीम के सब खिलाड़ी अच्छे हैं, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उनसे नहीं जीत सकते।
0: ओहो,
1: लो भाई, अपने मानव ने तो खेलने से पहले ही हार मान ली।
3: अब कौन आ गया? अब लगता है डॉक्टर इस्लाम, ब्रिजमोहन और डॉक्टर अल्पना जी आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं।
2: मानव आके प्रैक्टिस कर लो।
3: हाँ ब्रिज जी, कैसा रहा लेक्चर आपका?
5: बहुत अच्छा रहा भाई साहब। आज असल में महासागरों सागरों वर्षादी का पोषक तत्वों के वितरण में भूमिका पर चर्चा थी।
6: हाँ सूर्य प्रकाश, काफी अच्छी चर्चा रही।
0: लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए।
5: थैंक यू भाभी।
7: अरे ये मानव का मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है मानव, डांट पड़ी है क्या?
1: नहीं अल्पना आंटी, असल में मानव ने एक तगड़ी टीम से फुटबॉल खेलने और जीतने की शर्त रख ली है।
2: हाँ आंटी, और अब प्रैक्टिस करके उन्हें टक्कर देने की बजाय पहले से ही हार मान कर बैठा है।
7: क्या मानव, ऐसे हार मान कर कैसे काम चलेगा? अच्छा ये बताओ, कब है मैच?
4: अगले शनिवार को।
5: अरे भाई मानव, अगले शनिवार में तो पूरा एक हफ्ता है, तुम अभी से हार मानकर बैठ गए? हाँ
6: और क्या, अब ऐसे ही सारे महासागर, तेज बहती हवाएं, वायुमंडल हार मानकर बैठ जाएं तो चल गया जीवन।
4: क्या इस्लाम अंकल, कहाँ फुटबॉल का खेल और कहाँ महासागर वायुमंडल की बातें।
6: अरे वाह, क्या अलग है दोनों में? दोनों ही यानी महासागर वायुमंडल फुटबॉल की टीम के खिलाड़ियों की तरह एक दूसरे के सहयोग से ही तो चलते हैं।
5: हाँ भाई, इस आपसी समन्वय से फुटबॉल में तुम मैच जीतते हो, और महासागर वायुमंडल के आपसी समन्वय से जीतता है जीवन।
7: और जीवन तो निरंतर जीतता चला आ रहा है, क्योंकि महासागर और वायुमंडल अपने तालमेल को बिगड़ने ही नहीं देते।
1: वो कैसे अल्पना आंटी?
5: भाई वो डॉक्टर इस्लाम बता रहे थे कि पिछली बार आप सबसे जो बातें हुई थी उसमें उन्होंने एक बूंद के पूरे सफर को बताया था।
7: कैसे ये बूंद मानव की पसंदीदा भिंडी बन गई थी।
1: पसंदीदा।
6: देखो भाई मानव, जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि सूरज से सिर्फ ऊर्जा हमें मिलती है, इसी ऊर्जा से ही महासागरों व वायुमंडल में गतिविधियां होती हैं, और फिर वायुमंडल अपनी गति लेता है,
7: और इन सब गतिविधियों की वजह से मौसम बनते हैं, पोषक तत्वों का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा अपना रूप बदलती है और जीवन सांसें लेता है।
5: देखो मानव, समुद्री पानी में समुद्री जीवों के लिए ऐसे पदार्थ होते हैं जो समुद्री जीवों के पोषण और शंख आदि की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं।
7: हाँ भाई, सागर के पानी में सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आदि के यौगिक होते हैं, जिनके साथ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनियम, लौह और मैग्नीज भी सतही जल में मौजूद होते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अल्पना, ये सब एक मित्रण के रूप में सागरों की ऊपरी सतह के जल में होते हैं।
3: हाँ।
6: जहाँ सूरज की रोशनी काफी मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है।
2: अच्छा।
6: हाँ, इस प्रक्रिया में खनिज लवण जैविक पदार्थ में बदल जाते हैं और जीवन को आधार मिलता है।
4: अंकल इतना तो मैं जानता ही हूँ, पर इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
3: अरे मानव, जीतोगे जीतोगे, पहले पूरी बात तो सुन लो। भाई ये खाद्य श्रृंखला सतही जल पर तो चलती रहती है, परंतु बहुत सारा जैविक पदार्थ जीवों के मरने के बाद सागरों के तल में समा जाता है। मैं दोस्त किसका हूँ, दोबारा ही ना।
1: फिर ये पोषक तत्व समुद्र की ऊपरी सतह पर रहने वाले जीवों को कैसे मिलते हैं?
6: सृष्टि बेटा, यही तो आपसी समन्वय है। जीवाणु की क्रिया द्वारा ये पोषक तत्व सागरों की अतल गहराइयों में आयनी रूप में बदल जाते हैं, और सूरज की ऊर्जा के इंजन से चलने वाला महासागरीय चक्रण इन पोषक तत्वों को वापस सतही जल में पहुंचा देता है, जहां फिर जीवन खिलने लगता है।
4: पर ये पानी ऊपर नीचे होता कैसे है?
1: अरे वाह, मानव को तो रोचक लगने लगा ये सब। लीजिए भाई साहब चाय पीजिए, और ये लीजिए पैटीज।
3: हेलो भाई, वसुधा भी पोषक तत्व लेकर आ गई है। थैंक यू वसुधा। लीजिए लीजिए लीजिए, आप लीजिए ना, विश्राम ले लो।
7: हाँ भाई, तो मानव जानना चाह रहा था कि ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर कैसे जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
7: तो भाई ये सब घनत्व के उतार चढ़ाव के कारण होता है,
1: यानी पानी का खारापन।
2: और ये खारा इसलिए होता है क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी आदि को बहा कर लाती हैं, उनमें लवण होते हैं, और महासागरों में फटने वाले ज्वालामुखी आदि से लवण समुद्र के पानी में घुल जाते हैं।
5: वाह वाह वाह विवेक भाई, तुम्हें तो बहुत जानकारी है।
2: थैंक यू अंकल।
5: शाबाश शाबाश।
4: पर विवेक भैया, नमक से महासागरों के पानी के ऊपर नीचे होने का क्या संबंध है?
6: अरे भाई, सारा आपसी समन्वय है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे फुटबॉल में फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे ऊर्जा की भी भूमिका और नमक की भी है।
7: वो कैसे? भाई महासागरों में पानी का घनत्व लवणता और तापमान की भिन्नता से प्रभावित होता है। ठंडा और खारा पानी ही सबसे सघन होता है, तो ये ठंडा नमकीन पानी समुद्र तल की ओर नीचे बैठ जाता है, जबकि गर्म कम नमकीन पानी जिसकी सघनता कम होती है वो महासागरों की सतह पर बना रहता है।
5: अच्छा। तो इस तरह अलग अलग महासागर की परतों पर सघनता की भिन्नता रहती है, तब जाकर बनते हैं सागर की गहराइयों में प्रवाह। जब ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडा नमकीन भारी पानी तल की ओर बैठता है तो ये प्रवाह बनता है।
7: महासागरों के तल पर होता हुआ ये पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा के गर्म पानी की ओर चल देता है।
2: अच्छा।
7: भूमध्य रेखा पर हवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं, और ये निरंतर चलती हवाएं भूमध्य रेखा के गर्म सतही पानी को ध्रुवों की ओर ढकेलती हैं, और सागर के तल से ठंडा पानी सतह की ओर ऊपर उठता है।
5: फिर ये पानी गर्म होकर ध्रुव की ओर बढ़ जाता है, हवाएं इस सतही पानी को धकेलती हुई ध्रुवों पर पहुंचाती हैं, और फिर यह पोषक तत्वों से भरपूर सतही जल कई प्रकार के जीवों के काम आता है, और फिर पूरा चक्र दोबारा चलता है।
1: कमाल है।
7: हाँ सृष्टि, ये सब प्रकृति के आश्चर्यजनक कर्म हैं, जिन्हें जितना समझो उतना ही अचरज होता है।
6: असल में सृष्टि बेटे, ये सारी गतिविधियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि सूरज हमारे ग्रह को एक जैसा गर्म नहीं करता। जहाँ एक ओर भूमध्य रेखा पर सूरज की सबसे अधिक ऊष्मा महसूस होती है, वहीं दोनों ध्रुवों पर सूरज की ऊर्जा सबसे कम होती है।
5: अब जैसे सघनता और तापमान की भिन्नता के कारण महासागर के अलग अलग परतों में गतिविधियां होती हैं, ऐसे पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल की कई परस्पर गतिविधियां होती रहती हैं।
7: पानी हवाओं आदि सभी का एक निश्चित चक्र होता है जो तापमान और सघनता के द्वारा तय होता है।
2: इस्लाम अंकल,
6: बोलो विवेक।
2: आपने पिछली बार बताया था कि महासागर ऊपर से नीचे की ओर गर्म होते हैं और वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ठीक?
6: हाँ विवेक, बिल्कुल।
2: तो अंकल, इससे फर्क क्या पड़ता है?
6: देखो विवेक, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि सघनता और तापमान के फर्क से एक चक्र बनता है।
2: अच्छा।
6: असल में इन्हीं कारणों से कम दबाव या अधिक दबाव के क्षेत्र बनते हैं। इस सघनता की भिन्नता में समानता लाने के लिए ये चक्र चलते रहते हैं। जब वायुमंडल में ये गतिविधियां होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं।
7: तो बच्चों, ये महासागरों की सतह पर बहने वाली हवाएं लहरें तो पैदा करती ही हैं, साथ ही साथ सतही पानी से ऊष्मा लेकर उस पानी को ठंडा करती हैं और खुद ऊपर की ओर उठ जाती हैं।
1: हाँ हाँ आंटी, ये तो हम जानते हैं।
4: हाँ, पर मैं फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
1: ओ मानव,
0: मानव तो अभी तक फुटबॉल में अटका हुआ है। मानव
5: अच्छा तो है भाभी, इतनी गंभीर बातों में भी मानव अपना लक्ष्य फुटबॉल नहीं भूला। बस मानव, महासागर और वायुमंडल का आपसी संबंध समझ लो तो फिर तुम्हारी जीत पक्की समझो।
4: कैसे अंकल?
6: अरे भाई, इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर करीब 72% में महासागर हैं, जो धरती पर ऊष्मा के सबसे बड़े भंडार हैं।
7: पता है मानव, धरती के सारे महासागरों के ऊपरी 10 फीट में इतनी ऊष्मा समाई है जितनी के पूरे वायुमंडल में।
3: अच्छा। हाँ, और इससे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर छोटे बड़े चक्र और प्रवाह के द्वारा महासागर इस ऊष्मा का हस्तांतरण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
6: सूर्य प्रकाश, मैं एक उदाहरण देता
3: हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर,
6: आप तो वाह वाह बोले जा रहे, कितनी
3: कितनी जानकारी।
5: हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
6: अच्छा, तो मैं उदाहरण की बात कर रहा था।
5: हाँ, बताओ।
6: तो पार अटलांटिक खाड़ी प्रवाह में भूमध्य रेखा से आया गर्म पानी करीब 4.5 अरब घन फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है।
5: हाँ।
6: यानी उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए प्रति घंटा इतनी ऊर्जा लगा देता है जितनी 5 अरब टन कोयला जलाने से पैदा होती है।
1: हाँ। बाप रे, इतनी ऊर्जा।
7: हाँ सृष्टि। अच्छा सृष्टि, कभी तुमने सोचा है कि समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में या फिर बड़ी झील के आसपास के क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी इलाकों के तराई क्षेत्रों में निरंतर हवाएं क्यों चलती हैं?
2: आंटी, ऐसा दबाव की भिन्नता के कारण होता होगा।
5: अरे वाह विवेक, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आमतौर पर ऐसा इसलिए ही होता है, परंतु सामान्यतः तेज हवाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ हवाएं बिल्कुल ऐसे नियमित रूप से चलती हैं जैसे सूरज का उदय और अस्त।
1: अच्छा, वो कैसे अंकल?
6: असल में बेटा, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि महासागरों के किनारों पर या बड़ी झील आदि के किनारों पर निरंतर हवाएं चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूरज भूमि को सागर की तुलना में तेजी से गर्म करता है। इस कारण भूमि की गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह समुद्र या बड़ी झील से आने वाली ठंडी हवा ले लेती है।
7: और रात को ठीक उल्टा होता है, जमीन पानी की तुलना में ठंडी होती है, इसलिए रात को किनारों से ठंडी हवाएं पानी की ओर चलती हैं। इस तरह ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चक्रों का उदाहरण है जो बहुत ही सीमित इलाकों में निरंतर क्रिया करते रहते हैं।
1: और तराई के इलाकों में क्या होता है?
6: सृष्टि बेटे, तराई के इलाकों में जब सूरज निकला होता है तो पहाड़ों की अगल बगल की और ऊपरी हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे गर्म हल्की हवाएं ऊपर उठती हैं और तराई से बाहर की ओर निकलती हैं। इसे एक ऐसा चक्र बनता है जो दिन भर चलता रहता है, यानी ठंडी बयार बहती रहती है।
7: हाँ। और रात को जब पहाड़ों की ऊपरी और अगल बगल वाली हवाएं ठंडी हो जाती हैं, तो ये सघन हवाएं तराई में नीचे की ओर आती हैं, जिस कारण पहाड़ों से आने वाली हवाएं रात भर चलती रहती हैं।
3: बिल्कुल ठीक।
1: पर ये तो बहुत कम इलाकों में होता है, पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल का चक्र कैसे चलता है?
5: देखो बच्चों, तुम्हें भूमध्य रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों का सफर तो हमने कुछ कुछ बता दिया। हाँ।

0: वायुमंडल के चक्र को फिर आगे चलकर बताएंगे। अभी तुम्हें महासागरों के विभिन्न चक्र, प्रवाह आदि थोड़ा थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है?
1: पर अंकल, इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
2: ओ मानव,
3: ओ मानव, इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम। अरे सतही प्रवाह, जलवायु नियंत्रण, अंतरजलीय प्रवाह, वाष्पन, वर्षा, नमी, दबाव आदि सभी इतनी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें सब एक आपसी सहयोग और समन्वय नहीं बना सकते। समझ गए ना? समझ गए ना
1: अंकल? अब कुछ कुछ समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
4: चलो मानव को कुछ समझ तो आया।
2: तो अंकल, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि महासागर धरती के मौसम को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वो भूमि को गर्म और ठंडा करते हैं, हवा को नमी देते हैं और शुष्क भी करते हैं, और हवा की गति एवं दिशा को भी नियंत्रित करते हैं, है ना?
3: वाह वाह सृष्टि बेटे वाह, इतना सरल तो हम भी नहीं कह पाते। शाबाश बेटे, शाबाश।
4: मैं कह लूं कि जैसा पिता वैसी पुत्री।
3: प्रकाश जी तो कमाल की बात करते हैं।
5: सृष्टि बेटा, इसके अलावा महासागरों का जल वाष्पित होकर बादल बनाता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं।
0: गर्म जल की धारा शीत ऋतु को थोड़ा कम तकलीफ दे बनाती है, तो गर्मियों में ठंडी धारा थोड़ा सुकून पहुंचाती है।
3: हाँ भाई, ये तो कुछ उदाहरण है जिनके द्वारा हम कह सकते हैं महासागर हमारी धरती की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं।
5: हमारी जलवायु प्रणाली के अंतर्गत ये महासागर ताप के इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे मानव, फुटबॉल करता रहेगा तो ये सब समझ कहाँ से आएगा?
4: हाँ।
2: ये बताया तो था कि भूमि और बर्फ की सतह की तुलना में महासागर ज्यादा ऊष्मा सोखते हैं।
6: हाँ बिल्कुल, ये महासागर भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा सोखते हैं और उसे विभिन्न प्रवाहों के रूप में ध्रुवों तक ले जाते हैं,
2: और इसीलिए महासागरों को ऊष्मा का भंडार कहते हैं। समझा मानव?
1: हाँ दीदी।
3: महासागरीय प्रवाह कई सारे हैं। ये प्रवाह पूरे महासागरों में बड़े बड़े महापाश यानी लूप के रूप में घूमते रहते हैं। इन्हें गायर यानी वृत्ताकार गति कहते हैं। और जो ये
1: बस अंकल, आज के लिए इतना ही काफी है। आप गायर महासागरीय प्रवाह के बारे में अगली बार बता देना।
4: बेचारा,
1: मुझे अभी फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी तो जाना है।
3: शाबाश, ये हुई ना बात। भाई हम तुम्हें महासागर, वायुमंडल सब बताएंगे जरूर, पर तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस पूरी मेहनत से करो और जीतो।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारी फुटबॉल टीम का कप्तान सूरज की तरह होना चाहिए, जो पूरी टीम को ऊर्जा दे, समझे?
1: हाँ अंकल।
6: हाँ मानव, तुम्हारे फॉरवर्ड बिल्कुल महासागरीय और वायुमंडल के चक्र और प्रवाह की तरह होने चाहिए, जो कभी इधर तो कभी उधर होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, समझे?
5: और वो लक्ष्य है गोल।
1: हाँ आंटी, अब तो गोल ही जीवन है, मैं चला।
4: भाई वाह, मानव आज कर्म की अहमियत समझ गया, फल की चिंता में बेकार ही घुला जा रहा था।
5: भाई साहब, ब्रज जी, अल्पना जी, आप लोगों ने इस धरती से जुड़ी बातों को मानव की फुटबॉल से इतना बढ़िया जोड़ा कि किसी को भी जोश आ जाए।
3: बिल्कुल। अरे भाभी, पूरा जीवन ही एक नाजुक संतुलन और आपसी समन्वय पर टिका, जो इसे समझ ले वो सिर्फ जीता है।
0: बिल्कुल सही।
1: मम्मी, भैया, सृष्टि, पापा, मैं जीत गया। मम्मी पता है हमने आज 5 गोल किए और पिंटू है इसकी टीम में तो बस 2 गोल किए। और पता है मैंने 3 गोल किए।
4: शाबाश मानव, शाबाश। देखा, अपने पर भरोसा करने का फायदा देखा?
1: नहीं पापा, असल में हम सब एक पूरी टीम, एक पूरी यूनिट के रूप में खेले और इसीलिए जीते।
2: शाबाश। देखा, तुम सूर्य, महासागर और वायुमंडल के आपसी समन्वय की तरह खेले और जीते।
6: और सृष्टि की इसी बात पर पूरी टीम को मेरी तरफ से आइसक्रीम।
7: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप या कहें कि जीवों की एक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साय में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय मैं हूँ रन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर महावारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर महावारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा। It's the

लेने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
1: एफएम। सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
3: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
4: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
3: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है
4: तो भुगतो।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें। कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
2: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
1: सच्ची?

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह

आएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Oh, hi.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें

0: अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये

0: भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: नमस्कार, हम हैं आशा और आज हम आपको बताएंगे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को माँ की त्वचा के संपर्क में रखें। बच्चे को माँ के शरीर से लगाकर गर्मी देना बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। नवजात का वजन जरूर कराएं ताकि नवजात के वजन की जानकारी मिल सके। नवजात को जन्म के कम 7 दिन बाद नहलाएं। शिशु को हमेशा साफ कपड़े से ही पोछें। नाभि नाल को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। नाभि नाल पर तेल, पाउडर, राख, गोबर, हल्दी इत्यादि बिल्कुल न लगाएं। इससे इन्फेक्शन लगने से शिशु बीमार पड़ सकता है। बच्चे को सूखे एवं स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखें। माँ किसी कारण से बच्चे को अगर सीने से लगाकर ना रख सके तो घर का कोई भी और सदस्य उसको सीने से लगा सकता है। बच्चे को रात दिन 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पिलाएं। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही परिपूर्ण आहार है। इससे पोषण संबंधी सभी जरूरतें पूरी होती हैं और बच्चा बीमारियों और संक्रमण से बचा रहता है। माँ और परिवार के सदस्य शिशु को छूने से पहले हर बार अपने हाथ साबुन और पानी से अवश्य धोएं। याद रहे, बच्चे का स्वास्थ्य और विकास आपके हाथों में है। अगर जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ सकती है बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी, क्योंकि सही तरीके से की गई सही देखभाल से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।